पाउरी जो मास बार सिमो मुच पत्त पत्त श्रोटा लाफा को के ना मास ब्रेक दुर्गा ठाकुर मगरो आजा ले पत्त लाफा को झेलमना आउला गिपमना आउला दिमो ना पनी ना कुं पत्त पत्त कुं ढलिंगो हो दिमो गिपमना ले झेलमना ले है जा लाफा को नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ शुक्ला गण्डकी नगर समन्वय परिषद आदिवासी हो जोडले जे दोषी पाऊ रेडियो मास बार सीमो मुच पत्त पत्त श्रोटा लाफा को के

हुनी करिब करिब 2 बजे सम्म पुनः प्रसारण शुक्रबार नबिलाको 2 बजे ढोर बराई हाइलाइट हुनी यहाँ करिब करिब 2 बजे सम्म रेडियो ढोर बराई काठढुङ सोम थोप्ला के मेगा चाहिँ अन्तर मनो आवाज प्रसारण छान्के जातले ना कोही कान के रेडियो ढोर बराई फेसबुक पेज हाम्रो पात्रो मोबाइल एप वेबसाइट www.radiodhorbarai.com .np लगिन जात्म भिन्टाभरि कठक अठर सिके हेतले है त श्रोता लाखाको चाहिँ भने काट सेत लिन चेन है त अत्यन्त लाग्छ कहुरा लिन झट्टै जुवा बाहा छ।

0: वाल खुकुरी टोपी लगायत परम्परागत जातीय गर गहनाहरू शिरबन्दी शिरफूल टिकमाला ढुम्री यार्लिङ मारवाड़ी पाटे सुन बुलाकी लाहुरे फुली जन्तर चन्द्रमा नौगेडी असर्फी कण्ठमाला मुगामाला हमिलमाला न्यापुसिख ज्यापुसिख तायोमाला लुसवाङ माकसी कल्ली बिरमली आँसी खुर्पेटो सुर्खे थैली डोरी लगायत सम्पूर्ण पोतेका आइटमहरू पाइनुका साथै आधुनिक डिजाइनका गर गहनाहरू रानीहार चन्द्रहार मिनीहार चोकरहार मंगलसूत्र बालाचुरा पञ्चधातु अंगुठी रामलीला झुम्का पिजोडा झुम्का सिक्री लकेट माइली तिलहरी छड्के तिलहरी घुम्टो क्राउन सेन्डिल जिम्बु र ब्रुनाईको माछा पाइन्छ।
1: सम्पर्क युर सिंगापुर एफएनसी एन्ड ज्वेलरी सप मुक्तिनाथ बैंकको एक घर माथि दुलेगौड़ा प्रोपाइटर आरएन कुमार श्रेष्ठ मोबाइल 9821484264 र 9141453005।
0: दिस इज रेडियो ढोर बाराही 103.8 मेगाहर्ज
2: 103.8 मेगाहर्ज प्रेजेंट एवरीडे 10:30 AM टू 12 PM
3: इट्स टाइम फॉर कॉलिंग टाइम
2: ओनली ऑन रेडियो ढोल बाराही